ये भी ऑफर से लगा है ना उसका तो क्यों और चीनी का बाजी नहीं ए इन मोबाइल देखी और हाँ चीज का क्यों है लेकिन ले ले मुझे ऑफर और यह तो चीजें नहीं तो ले ते चीन नहीं लेकिन तो भी और यह भी नहीं चीन का ले तो नहीं चाहता है लेकिन ले ले ना उसका तो चीनी